चतुर्च वृत्त बिमालक गुरु सिंहासन के प्रकाशमान धन धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तारिया जहान लहिया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुदनों धन कहया तिन जम नेड़ ना आया। ऐसी रहमत दे मालिक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे अमृत वेले सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दे अंदर प्रकाशमान हुंदियां आए अज दे अमृत वेले दे पावन हुक्म मुख वाक जो कि हरिमंदर साहिब तो आप जी हुन वेले हुण तक दो बारी श्रवण कर चुके हो उस पावन दर से मस्तक चुकाया रहमत नाल चोली पर के इस समय दीवान हाल मंजी साहब श्री अमृतसर साहब की पावन धरती से सिजदा कर रहे हैं। साहिब जान अदायब दे हैं साहिब जान के अदर सहत अपने साहिब नू मस्तक चुका के नमस्कार की थी। चूंके झुकता वही है जिसमें जान होती है अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। साहिब के चरणा विच नमस्तस्त होके परम पवित्र बारगाह विच बैठ के पावन हजूरी विच बैठ के साहिब के अमृतमई पावन बोलां नू श्रवण करदे आं जो कि अज दे ए पावन हुक्म श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे 471 अंग ते वार आसा दी बाणी 15वां श्लोक आरंभ हुंदे आं 30 पंक्तियां दे ए 4 श्लोक ते 1 पौड़ी दे अमृत हुक्म अज सानू नसीब होए ने। आओ साहिब दे हुक्म दी विचार करन तो पहला मैं शब्द विचार दी सांझ तो पहला सारी संगत नू हाथ जोड़ के जी आया आखदिया कलगीधर जी दी बख्शिश कीती होई पावन फते नाल सांझ पावन लई समूह संगतां नू अर्ज करदा हां जी। सारे आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन हुक्म नाल एक इतिहास जुड़िया है बचपन की घटना है। गुरु नानक महाराज बैठे ने कुछ इकट्ठ किया गया है पंडित आया है जिंजेऊ पाउण दी रस्म दे नाल अज धन गुरु नानक पातशाह जी दे पास आ बैठा पंडित हजूर ने बड़े गौर नाल तकिया पंडित जी की करन लगे हो ये हाथ विच की फड़िया जे ते पंडित कहन लगा जनेऊ पाउण लगा ते कादा है ये कपाह दी रूं दा बने ये गंढा दे के वट चढ़ा के जनेऊ तैयार किया गया मैं तुहाडे गल विच पावांगा एक धर्म की रस्म हो जाएगी। गुरु नानक पातशाह जी ने उत्थे एक गल समझाई ऐ पंडित जी जनेऊ पहनान वाले पंडित जी ते जनेऊ पहनन वाली तमाम लोकाई नू हजूर ने एक बहुत संकेतक भावना दे नाल जो उपदेश दिता है आओ साहिब दे उन्हां पावन बोलां नू जिथे पाठ रूप विच श्रवण करदे जाइए उत्थे साहिब दी रहमत प्राप्त करके मैं धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ओट लैके शब्द विचार करन दा कुछ कहिया कर सकां। साहिब रहमत करन विचारी होई शब्द बाणी दी विचार ओ दास दे ते समूह संगतां दे हिरदे विच वस जाए। आओ शब्द विचार आरंभ करन तो पहला एक बारी अपनी अपनी रचना तो सारे आखो

गुरु नानक पातशाह फिर अगले श्लोक विच कथन करदे ने, नाय मन्या पत पाईऐ सा लाही सच सूत, जिन्ना ने नाम नू मन लिया मन्ने नाओ सोई जिन जाए। मनना की है इत्थे गल जरा ध्यान च लैना। रामकली महला पहला, तुदनो निवन मनन तेरा नाओ, जेरे तेरे अगे झुक जांदे ने

खंड मंडल ब्रह्मंडाउ कर कर रखे तेरे थारे। सही तुदन गावन जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले। होर केते तुदन गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या बिचारे। सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई। है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पाती कर करू जनसी माया जन पाई। कर कर देखा किता अपना ज्यों तिस दी वड्याई। जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई। सो पातशाह शाह पात साहिब नानक रहन रजाई। आसा महला पहला। सोना वड्डा आख सब कोए के बड़ वड्डा डीठा होए।

हरि आपे ठाकुर हरि आपे सेवक जी क्या नानक जंत बिचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एक पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बिडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हौ तुद बिन अमर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा जो सेव है जो सेव तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्यावै हर त्यावै तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी से मुकत भये जिन हर त्याया जी तिन तूटी जमकी फासी जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी तिन का पाओ सब गवासी जिन सेव्या जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़े बोसिमृत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख परंपर करता जी तुद जीवड़ वरना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निचल करता सोई तुद आपे पावे सोई वरतै जी तू आपे करहे सोई तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुद आपे सरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई आसा महला चौथा तू करता सजियार मैं डसाई जो तुम पावे सोई थीसी जो तुम बेहे सोई हम पाई राओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करहे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया

मान एक न चेतस मूढ़ मना हार बिसरत तेरे गुण गलियार ना हो जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक दिन की शरणा जन तू ना ही विसरिया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन किए तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजा मिलाग भव जल तरन कै जन्म मृथा जात रंग माया कह रहो जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जानिया हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शर्मा पातशाही दसवीं कव्यो बाज बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए जत की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो ब्रत पारा हमरे दोष्ट सब तुम काव आप हाथ दे मोहे बचाव सुखी बसै मोरो परिवार सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करे आए सब बैरन को आज संगरे आए पूर्ण हुए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड कोई अबर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरे है मरण काल का त्रास निवरे आए हु जो सदा हमारे पछा सरिया सुजु करे हो रक्षा राख ले हो मोय रखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे

कर भीषण पर घासा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार दसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिव कन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोबद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते गूंजर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै कट कट के पट पट की जानै जब उद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देहि अपार जब या करख करत हो कबहू तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझो चारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद हर आलम।

तावत वेद तांको कार्य उपाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत न पैव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पहन पहन तो है तेती तुमरा लखा न जाई पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहीं भूपा अंडज जेरज सिदज किनी पुत पुज खान बहोर रच दीनी कहूं फूल राजा वह बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंपव आदि जुगाद स्वरूप सुयम पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार या सिख संगरो दुष्ट जिते उठ बतो तो पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस्तुज दब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत वह मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं तांके काल निकट न आए हैं रक्षा हुए ताही सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे न हरे हो तांके ताप तन कमो हरे हो हृद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शास्व सक न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास दे ताही उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दोष्ट दोख ते रहा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दैले उबारी सर्व ठौर मोह सहाय दोष दोख ते लेह बचाई सवैया।

तुम ही सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले परम सन्मान योग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की अपार कृपा रहमत सदका सत्कारयोग भाई गुरदास जी दियां वारां दी विचार लड़ीवार संखेप रूप में चल रही है। भाई गुरदास जी दियां 28 वारां दी संखेप विचार संपूर्ण हो चुकी है। अज 29वीं वार दी विचार शुरू होनी है। विचारां दी आरंभता तो पहला रसना पवित्र करिए। सरबत संगतां प्रेम सहित गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। इस वार दे विच भाई गुरदास जी बचन करदे हन कि गुरु कौन है, गुरु किनू कहिंदे है। पहलां परमेश्वर दे चरणां विच नमस्कार कीती है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद परमेश्वर एक है, सर्व व्यापक है, पूरे गुरु की कृपा दे नाल मिलदा है। पहली पौड़ी विच भाई गुरदास जी बचन लिखते हैं, आदि पुरख आदेश है सतगुर सच ना

बड़े प्रसन्न हुए। भाई सहदे का प्यार वेख के हिरदे नाल आया, आख्या भाई दया सिंह देश नूं मोरा इहदी गरीबी कट दे। भाई सहदे ने हाथ जोड़ के आख्या गरीब निवाज मैनू तन नहीं चाहिदा।

शरीर नूं संकल्प करके त्याग के भाव हंकार तो रहत होके एक मन हो गए। पंज तत्त दे मन शरीर तो निकल के उन मन विच आ गए। महाराज ने वचन किया है, एह मन लै जो उन मन रहे तो तीन लोक की बातें कहे। एक मन का रूप की है तो दूजी चिंता छड़ती। लोक वेद गुर ज्ञान लेव अंदर एक बहर बहु पिता। गुरु दे ज्ञान नाल अंदर एकाग्रता पैदा होगी। लोक ते वेद है अंदरों मन करके एक रूप है। वो परमेश्वर दे ज्ञान नूं ही अपना लोक परलोक मानते हैं। अंदर टेके हुए ने भाव लोक पछाण नहीं सकते। सब नाल मिठा वरतदे आ, सब नाल वधिया मिल के रहिंदे आ, पर अंदरों निर्मोहे रहिंदे ने। जिवें पाणी दे विच कमल दिसदा, रहिंदा पाणी च ही है पर रहिंदा निर्लेप है। इसे तरह गुरसिख रहिंदा संसार दे विच ही है पर रहिंदा निर्लेप है। ते जिहड़ा कुछ दिसदा उहनूं परमात्मा दा रूप ही समझदा। दीस आवत है बहु पिहाला, सगल चरण की ए मन राला। मात लोक पाताल जिन सुरग लोक विच होए अथिता। इस लोक विच ते पाताल दे विच पदार्थां नूं जित लिया, सुरग लोक दे पदार्थां नूं भी जित लिया। चार दिनां दे परौणे आ जिहड़े पदार्थ मिलदे आ सानूं, तिन्ना लोकां दे विच पूजनीक है। फिर उन्हां दा सुभाव बदल जांदा है, वो कौड़ा नहीं बोलते, मिठे मिठे बोल बोलते आ। मिठा बोलण निवचलण हथों दे कर पातत पवित्ता। वो सारिआं नाल मिठा बोल बोलते आ, किसी नूं कौड़ा नहीं बोलते। निम के चलते आ, भाव निम्रता दे विच रहिंदे आ। अपनी किरत कमाई दे विचों हथों दे के भला मनाउंदे आ, दान करदे आ, लोड़वंद दी सहायता करदे आ, पापां तों वी परे रहिंदे आ, पवित्र हो जांदे ने। पापियां ते पवित्रां नूं वी हथों दान दिंदे आ। गुरमुख सुख फल पाया अतुल अडोल अमोल अमृता। गुरमुखां ने सुखां दे फल नूं प्राप्त कर लिया, उन्हां नूं आत्मक सुख मिल गया। किहो जिहा फल मिलिया? ऐसा फल मिल गया जिहड़ा अतुल है, तोलिया नहीं जा सकता। जिहड़ा अडोल है, कदे डोलदा नहीं। अमोल है, जिहदा मुल ही नहीं पाया जा सकता। ये ऐसा अमृत पदार्थ है। साध संगत मिल पीड़ नपिता। साध संगत दे नाल मिल के मन नूं पीड़ के राग द्वैख दा पिता कढ दिंदे आ, भाव के दर्द वाली जगह खत्म हो जाती है, अंदरों दर्द महसूस ही नहीं होंदा। निरंकार दे चरणां दे नाल मुड़ के जुड़ के हंकार खत्म हो जाता है ते मन शुद्ध हो जाता है। फिर उन्हां दी चाल जग तो निराली हो जाती है। हुण गुरसिख की चाल किहो जी हुंदी है? गुरसिख किन्हां दे नाल रहिंदा? उन्हां दी संगत किहो जी हुंदी है? चार चार उदाहरणां दे के चार दी गिणती विच भाई गुरदास जी पंजवीं पौड़ी विच बचन करदे आ। चार पदार्थ हथ जोड़ हुक्मी बंदे रहन खड़ोते। चारे पदार्थ परमेश्वर का हुक्म मनण वाले बंदे दे अगे हाथ जोड़ के खड़े रहिंदे आ। महाराज जी कहिंदे ने, चार पदार्थ जे को मंगै साध जना की सेवा लागै। चारे पदार्थ हुक्म विच रहिंदे ने। चारे चक निवाया पैरी पै इक सूत परोते। ते चारे चक्कां दे लोक नीवे हो के नमस्कारां करदे आ, एक सूत विच परोए जांदे ने। वेद न पाइन भेद कहे पढ़ पढ़ पंडित सुन सुन स्रोते। वेदां नूं पढ़न वाले भी कोई भेद नहीं पा सके। पढ़ पढ़ के पंडित थक गए, सुन सुन के थक गए, हार गए, पर भेद नहीं आया। चौं जुग अंदर जागदी ओत पोत मिल जग मग जोते। चारां युगां विच
जगमग जगमग कर दी परमेश्वर की ज्योत जग रही।

नानक सतगुरु वाह वाह जिस ते नाम प्राप्त होए हर प्रभ सच्चा सोहिला गुरमुख नाम गोविंद अन दिन नाम सलाहना हर जपिया मन आनंद वड भागी हर पाया।

तिस विटो चौ खन्नी है जो मैं प्री दिखावे नानक हर होए दयाल ता गुरपुरा मिलावे अंतर जोर हूं मैं तन माया कूड़ी आवे जाए सतगुर का फरमाया मन ना सकी दुत्तर तरिया ना जाए नजर करे जिसे अपनी सो चले सतगुर पाए सतगुर का दर्शन सफल है जो इच्छा सो फल पाए।

गुरमुख सच्ची आशकी जित प्रीतम सच्चा पाइए आन दिन रह आनंद नानक सहज समाइए सच्चा प्रेम प्यार गुर पूरे ते पाइए कबहू ना होवे भंग नानक हर गुण गाई।

ताया कर्म कर नानक लेहो मलाए मैं जाचक दीजै नाम हर गुरमुख हसै गुरमुख रोवै जे गुरमुख करे साई भगत होवै।

नानक सतगुर मिले प्रभ पाई है सब दुख निवारण हार। मनमुख सेवा जो करे दूजे पाए चित लाए, पुत कलत कुटंब है माया मोह वधाए।

कूड़ करे आहार भिख माया धन संच मरह अंते हुए सब चार कर्म धर्म सुच संयम करह अंतर लोभ विकार नानक मनमुख जे कमावे सो थाए ना पवे दरगाह हुए खुआर सबना रागा विच सो भला पाई जित वसिया मन आए राग नाद सब सच है कीमत कही ना जाए रागे नादे बाहरा इनी हुक्म ना बूझिया जाए नानक हुक्म बूझे तिना रास होए सतगुर ते सोजी पाए सब किस तिस ते होया ज्यों तिसे दीर जाए सतगुर विच अमृत नाम है अमृत कह कहाए गुरमति नाम निर्मलो निर्मल नाम त्याय अमृत बाणी तत् है गुरमुख वसै मन आए हिरदय कमल पर गासिया ज्योति ज्योत मलाए नानक सतगुर तिनको मेले ओन जिन तुर मस्तक भाग लखाए अंदर तिस ना आग है मनमुख भुख ना जा।

आए जमन मरन ना चुकई हौ मैं कर्म कमाए गुर सरनाई उबरे नानक लहे छाए सतगुर पुरख हर त्याईंदा सत संगत सतगुर पाए सत संगत सतगुर सेवंदे हर मेले गुर मेलाए एहो पौजल जग

माहे तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया गुरु नानक मिलिया आए जम कंकर मार बधारियन

हो मैं साकत दुर्जना, नानक रोग गवाए, मिल सतगुर साधु सज्जना, गुरमति हर हर बोले, हर प्रेमक साई दिन सरात, हर रत्ती हर रंग चोले, हर जैसा पुरख ना लगई, सब देखिया जगत मैं टोले, गुर सतगुर नाम दड़ाया, मन अनंत ना काहू।

प्रेम बशोहा तड़ी सो अठे पहर लवन सुतड़े असंख माया झूठी कारणी नानक से जागन जे रसना नाम उचारनी मृग तिसना पेख भुलनी वुठे नगर गंधर्व जिन्नी सच अरादिया नानक मन तन फब पतत उदाहरण पार ब्रह्म समरथ पुरखे अपार जिस है उदारे नानका सो सिमरे सिर जनहार दूजी छोड़

कहो नानक हर भज माना अंत सहाय होए जन्म जन्म परमत फिरयो मिटयो ना जम को त्रास कहो नानक हर भज माना निरपै पावह बास जतन बहुत मैं कर रहयो मिटयो ना मन को मान दुर्मत स्यो नानक फदयो राख ले हो।

नानक समयो राम गयो अब क्यों रोवत अंध। मन माया मैं राम रहो निकसत नाहिन मीत। नानक मूरत चितर जी।

तेहे नर हर अंतर नहीं, नानक साची मान, एक भगत भगवान, जे प्राणी कै नाहे मन, जैसे सूकर स्वान, नानक मानो ताहे तन, स्वामी को गृह ज्यों सदा, स्वान तजत नहीं नित, नानक ए बिदहर भजो, एक मन हुए

फिर कंपयो पग डग मगे नैन जोत ते हीन। कहो नानक एह बिद पई तौ नहर रस लीन। निज कर देखियो जगत में को काहू को नाही। नानक थिर हर भगत है तेरा खो मन माही।

सब किस होते पाए, नानक सब किस तुम्हारे हाथ में, तुम ही होत सहाय, संग सखा सब

राग भैरो वह करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम भैरवी बिलावली पुन्या की गावह बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए भैरों की पांचो नारी पंचम हर

अष्ट पुत्र भैरव के गाव है गायन पात्र द्वितीया माल कौशक अलापे सांग रागनी पांचों थापे गोंड करी अरदेव गंदा।

अष्टपुत्र में कहे सवारी, पुन आई दीपक की बारी। कचेली पटमंजरी टोडी कही अलाप, कामोदी अवगुजरी संग दीपक के थाप। कालंका कुंतल और रामा, कमल कुसुम चंपक के नामा, गौरा औ कान।

सारे दुराचारी बन जाएंगे। भय करके कोई सदाचारी है, भय करके कोई संयमी है, भय करके कोई जोधा है, महाबली है, सूरमा है। दरअसल भय मनुख दी जीवा दी आंतरिक सुरक्षा है, न के एक पीड़ा है, न के एक दुख है। तो सह फरमान कर देने भय विच राजा धर्म द्वार, भय विच सूरज, भय विच चंद को करोड़ी कल्पन अंत, भय विच सिद्ध बुद्ध सुरना। जीवन नु भय विच रख के, प्रभु भय विच रख के कोई सिद्ध बने है, कोई बुद्ध बने है, कोई देवता बने है, कोई नाथ बने है। रब्बी भय नु एक पासे कर दईए, ना कोई देवता बन सकदा है, ना कोई नाथ बन सकदा है, ना कोई बुद्ध बन सकदा है, ना कोई सिद्ध बन सकदा है। सिद्धियां प्राप्त होंदियां ने दरअसल प्राकृतिक परमात्मा दे भय नु मन के। बुद्ध प्राप्त होंदी है अपने आप नु मर्यादा विच रख के प्रभु भय नु मन के। और इसे तरीके नाल आत्म प्रकाश का चानना हो जाता है, दीवा जल जाता है, मनुख देवता बन जाता है। पर बनन दा ढंग है प्रभु दा भय। कोई नाथ बन जाता है, भाव अपने जीवन नु नथ पा लेंदा है, सारिया इंद्रियां नु नथ पा लेंदा है, नाथ बन जाता है। तो ये प्रभु भय तो बिना इतनी उच्च पदवी दा प्राप्त करना कठिन है। भय विच आडाणे आकाश, ये जो तने आकाश, ये जो व्यापक रूप विच खड़े उपर आकाश ने, सतगुरुदेव जी महाराज कहने ये भी भय देखे। भय विच जोध महाबल सूर, भय विच आवे जावे पूर। महाराज फरमान करते ने कि जितने सूरमे ने महाबली ने ये भय देखे ने, ते सारिया ही जीवां दे सिर दे उत्ते भय दा लेख बकायदा तौर पर लिखे हुए। कोई ऐसा जीव नहीं जिदे मत्थे दे भय दा लेख लिखिया होया नहीं। आखिर कोई ऐसा भी है जिदे मत्थे ते ना हो? तो महाराज कहने हां, सगलिया भौ लिखिया सिरलेख, नानक निर्भव निरंकार सच के। महाराज कहने निर्भव भय तो रहत ते केवल ओही है जिड़ा आकार तो रहत, और केवल कोई इक्को एक परिपूर्ण परमात्मा है जो आकार तो रहत है, भय तो रहत है। जब कोई प्रभु दा भय मन लेंदा है तो फिर संसार विच निर्भय हो जाता है, कि प्रभु दा भय उसनों शुद्ध कर देंदा है, प्रभु दा भय उसनों निर्मल कर देंदा है, प्रभु दा भय आत्मिक आनंद तक ले जाता है। इस वास्ते प्रभु दा भय मनुख मात्र दी एक लोड़ है, एक सुरक्षा है, और एक बहुत वड्डी दात है जो जीवा दी झोली परिपूर्ण परमात्मा ने पासे रखी है। मौत दा भय है, पशु पंखी कीड़े मकोड़े अपने आप नु सुरक्षित थां ते ले जांदे ने, अपने आप नु बचाण दी कोशिश करदे ने। इह भय जे सारिआं विच ना होवे तां ना कोई अपनी तन दी हिफाजत करे ते ना ही कोई अपने मन दी हिफाजत करे। तो भय आंतरिक सुरक्षा है, बैरूनी सुरक्षा है। दूसरा श्लोक साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा, नानक निर्भव निरंकार होर केते राम रवाज। निर्भव ते केवल निरंकार है, आकार तो रहत जो परिपूर्ण परमात्मा है। होर कितने राम इत्यादक जो कहे जाने न, उते रवाल ने प्रभु दे चरणा दी खास ने, भाव ईश्वर दे सामने कुछ भी नहीं। ते ईश्वर दी कृत ने, ते जगत दे करता नहीं, ते ईश्वर दी कृत है। तो साहिब कहिंदे ने होर केते राम रवाल, रवाल कहिंदे ने खास ने, होर कितने ही राम प्रभु दे चरणा दी खास ने। केतिया कन कहानिया केते वेद विचार, कितने कृष्ण जी दिया गल्ला आखिया जांदियां ने, कथावां आखिया जांदियां ने, कितने ही वेद विचारक ने। साहिब कहिंदे ने इह सब भय दे चे, सारी परमात्मा दे भय दे चे। केते नचे मंगदे गिड़ मिड़ पूरे तार, कितने ऐसे नृत्यकार ने नचदे ने टपदे ने ताल दे चे, पर उन्हां दे अंदर भाव एको ही काम करदा है, जगत दे पदार्थ दी मन। उन्हां दा नचना, उन्हां दा टपना, उन्हां दा ताल दा पूरना केवल दुनियावी मन ते खड़ा है। अगां चल के आप कहंदे ने बाजारी बाजार में आए कढ़े बाजार, इस तरह दे जिहड़े नाटककार ने नचण वाले ने मंगते ने बाजार विच आके तमाशा करदे ने, और तरह तरह दे कौतक उस जगत नूं विखांदे ने, और कौतक विखांदे आया कुछ गाउंदे ने। की गाउंदे ने? गावे राजे राणियां बोले आ

0: इस पौड़ी दे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज प्रमाण कर रहे ने जे ओ अपनी बख्शिश करे रहमत करे ते उसकी सब तो वड्डी रहमत दा सदका बहुत वड्डी प्राप्ति आउंदी किसी सतगुरु दी। कोई सतगुरु मिल पैंदा है, ज्ञान मिल पैंदा है, सत दा प्रकाश मिल पैंदा है, ये सब तो वड्डी बख्शिश है और ये सब तो वड्डी प्राप्ति है। इहो जी बहुते जन्म भर में आ ता सतगुर शब्द सुनाया, बहुत जन्म तक जीव भटकदा रहा, जमदा रहा, मरदा रहा, आखिर इस जन्म मरण दे गेड़े च पै रहे जीव दे उत्ते प्रभु दी बख्शिश हो गई। कढ़िए इस नूं गेड़े दे, कढ़िए इस नूं चक्कर दे तां तां की सतगुर दा मिलाप करा दिता ते सतगुर तों सिर्फ बोल सुने तां सतगुर शब्द सुनाया, तां सिर्फ सतगुर दा शब्द सुनिया, सतगुर दी विचार सुने, सतगुर दे बोल सुने, सतगुरु मिलिए सच पाया जिन्हें विच्चों आप गवाया। साहिब कहंदे ने जैसे सतगुरु दा शब्द सुनिया इक ते बोध होया कि असीं बहुत जन्म तक भटकदे रहे। सतगुरु दा शब्द पहला बोध यही करांदा है, क्योंकि जैसे सतगुरु दा मिलाप होंदा है तां इह बोध होंदा है कि बहुत जन्म भटकदे रहे। सतगुरु दा शब्द जब सुनिया ता फिर दूजा बोध ए होया कि सतगुरु जेवड़ दाता को नहीं सब सुनियो लोक सवाया। हे जगत दे सारे लोकी सुनो, सतगुरु तो वड्डा होर कोई दाता नहीं, वो ज्ञान दाता है, वो परमात्मा दे प्रेम दा दाता है, वो परमात्मा दे मार्ग दा दाता है। इस वास्ते कहने ने मां बाप जीवन देंदे ने, मां बाप जन्म देंदे ने, गुरु जीवन देंदा है, मां बाप तन देंदे ने, गुरु आत्म प्रकाश देंदा है, मां बाप जिंदगी देंदे ने, गुरु जिंदगी सफल करदा है, गुरु जिंदगी पूर्ण करदा है। तो इस तरीके नाल मां बाप नालों भी महान है गुरु, और साडे देश के करीबन करीबन तमाम रिश्तियां दे चों गुरु दा रिश्ता सब तो उच्चा मनिया गया, सब तो महान मनिया गया, क्योंकि केवल जन्मदाता नहीं वो जिंदगी दाता है। वो सिर्फ जिंदगी देंदा नहीं, जिंदगी में सफल करता है। जिंदगी मिल गई केड़े कम की अगर सफल नहीं होगी, जन्म मिल गया तो जे जीवन की जात नहीं आई तो ऐसा जन्म केड़े कम का। तो गुरु की बहुत वड्डी ए बख्शिश है। महाराज कहने सतगुरु जेवड़ दाता को नहीं, सतगुरु जैसा और कोई भी दाता नहीं, ऐ जगत दे सारे लोग गौर नाल जो है सुन लो। सतगुरु मिलिए सच पाया जिन्हें विच्चों आप दवाया। सतगुरु दे मिलाप दा सदका साधना करदिया होया जिन्हां ने अपने आप दे चों आपा भाव गवा छड़िया, अहंकार गवा छड़िया, उन्हां नूं सच दी प्राप्ति हो गई, उन्हां नूं सच दा मिलाप हो गया। ते फिर सतगुरु ने जिन सचो सच बुझाया, उन्हें ऐसी बूझ बुझा दिती कि ये सच है, ये सच है। जीवन दे हर पक्ष दे, जीवन दे हर पहलू दे सच नूं वेखण दी जांच आ गई, सच नूं मनण दी समर्था मिल गई, सच नाल जुड़न दा ढंग आ गया। संसार नूं वेखणा होर गल है, संसार विच सच नूं वेखणा होर गल है, पदार्थ नूं वेखणा होर गल है, पदार्थ विच सच नूं वेखणा होर गल है, बंदे नूं वेखणा होर गल है, बंदे विच सच नूं वेखणा होर गल है, सूरज चंद तारिआं नूं वेखणा होर गल है, सूरज चंद तारिआं दी सच्चाई नूं वेखणा, हकीकत नूं वेखणा, सच नूं वेखणा होर गल है। ते जिहनूं संसार विच सच नूं वेखण दी जांच आ गई, दरअसल संसार विच रहिंदा होया निरंकार विच लीन हो गया, उन्हें जीवन का मकसद हासिल कर लिया, उसने अपनी जिंदगी सफल कर ली। तो ये जिहड़ी सब तो वड्डी दात है ये गुरु तो प्राप्त होंदी है। अकाल पुरख की बख्शिश हुई गुरु मिलता है, गुरु की बख्शिश हुई अकाल पुरख मिलता है। इस वास्ते इंज कह लीए पूर्ण तौर पर खेल ते सारे का सारा ये परमात्मा का है, अकाल पुरख का है, पर फिर भी उसने विचोला बना रखे है। उसकी जब बख्शिश होंदी है तो फिर गुरु मिलता है, मनुखा तन मिलता है। ये परमात्मा की बख्शिश है कि मनुखा तन का मिल जाना, ये अकाल पुरख की बख्शिश है कि गुरु का मिल जाना, ये बहुत उसकी वड्डी बख्शिश है कि सत्संग का मिल जाना, ये गुरु की ये बख्शिश है कि परमात्मा का मिल जाना, ईश्वर का जो है मिल जाना। जिन्हों गुरु मिले है उसके ते अकाल पुरख की बख्शिश है, पर जिन्हों ईश्वर मिले है उसके ते गुरु की बख्शिश है, उसके ते गुरु की रहमत है। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहते हैं इस वास्ते सतगुरु तो वड्डा होर कोई दाता नहीं, क्यों कि परमात्मा ने ते गुरु मिलाया ते गुरु ने परमात्मा मिला दिता। समुचे संसार दा वड्डा दाता गुरु ने मिला दिता। इस वास्ते गुरु तो वड्डा दाता और कोई भी नहीं। इस पौड़ी दे गुरु दी महिमा है ते साहिब कहिंदे गुरु दा इह जिहड़ा ज्ञान है इह जिहड़ा हासिल करना है ਇਹ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ CISK ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਫਰਮ ਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਨ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕੈਨੇਡਾ। You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
2: Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Tusi sun rahe ho Sikh Radio 94.3 FM. ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singsabha2@gmail.com singsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

चंद सूरज अवतार सगले धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल नानक मुसे ज्ञान विहुनी खाय गया जम काल। पंजवी पौड़ी दे ए श्लोक जो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे उचारण कीते हुए ने इस आप रास मंडल का जिक्र करते हैं। साढ़े देश एक ऐसा दौर लंघे है और कुछ रूप उसके हुण भी मौजूद ने कि अवतारी पुरुषों दीयां रासां पा के लोगों नूं ज्ञान देने की कोशिश करनी। पहली पौड़ी और इस तों पहले श्लोक सतगुर कह आए ने कि ज्ञान ना गली ढूंढी है कथना करड़ा सा। ज्ञान गल्लां नाल नहीं प्राप्त हो सकता, ज्ञान राजे राणियां दे गीत गायन नाल नहीं प्राप्त हो सकता, ज्ञान नचण टप्पण दे नाल नहीं प्राप्त हो सकता, बल्कि अकाल पुरख दे प्रसाद नाल प्राप्त होंदा है, उसकी रहमत ते बख्शिश नाल प्राप्त होंदा है, ते उसकी रहमत बख्शिश गुरु दी बख्शिश द्वारा प्राप्त होंदी है। हुण इस श्लोक दे साहिब कहिंदे ने कि अगर वाकई रास दे राही ही ज्ञान लैणा है, रास नूं वेख के ही आनंद माणना है, ता रास उस परमात्मा दी तरफों अठे पैर पै रही है, अठे पैर रास लीला चल रही है। किथे चल रही है, केड़ी थां ते वेखण ते जाइए? साहिब कहिंदे किसी विशेष थां ते जाण दी लोड़ नहीं, रास लीला हर थां ते हो रही है, हर वक्त हो रही है, केवल वेखण वाली दृष्टि होवे। रास लीला विच श्री कृष्ण आउंदे ने, गोपियां होंदियां ने, ग्वाले होंदे ने, और फिर साजिंदे होंदे ने, संगीत दीयां धुनां होंदियां ने, निरत होंदा है। क्या यह सब कुछ हर थां ते मुयस्सर है? क्या यह सब कुछ हर थां ते मौजूद है? गुरु नानक देव जी महाराज जी अगमनी सूझ बूझ आप कहंदे हर थां ते मौजूद है, हर वक्त मौजूद है। घड़ियां सबे गोपियां पहर कन गोपाल, दिन रात दियां सठ घड़ियां मनिया जांदियां ने। साहिब कहंदे ने ये सठ घड़ियां सठ गोपियां ने, ते जिहड़े दिन रात दे अठ पैर ने ये ग्वाले ने, ये गुजर ने। घड़ियां नच रही ने, ग्वाले नच रहे ने। दिन का पहला पैर आया, नचदा टपदा लंघ गया, दूजा पैर आ गया, दूजा पैर शोर मचांदा लंघ गया, दिन का तीजा पैर, तीजा पैर नृत करदा लंघ गया, चौथा पैर फिर रात का पहला पैर। ये पैर बार बार नचदियां टपदियां लंघदे ने और नच के फिर उठे आ जाने। नृत की यह गल है कि नचदियां नचदियां दूर चले जाना, फिर अपने खास थां ते आ जाना। ये पैर नचदे टपदे फिर उठे आ जाने, फिर दिन का पहला पैर, फिर दिन का दूजा पैर, फिर दिन का तीजा पैर, फिर दिन का चौथा पैर, फिर रात का पहला पैर, नच टप के फिर दिन का पहला पैर। एक नाच हो रहे हैं। सठ घड़ियां गोपियां ने इन्हों अठ पैर रूपी ग्वालियां दे नाल वो भी नच रही ने। एक घड़ी गई, दूजी आई, दूजी घड़ी गई, तीजी आई, ते हर घड़ी दे अपने अपने ढंग का नृत हो रहा है, हर पैर दे अपने अपने ढंग का नाच हो रहा है। साहिब कहिंदे इस रास नूं वेखो ते सही जो प्रभु की तरफों पै रही है, जो अकाल पुरख की तरफों पै रही है। घड़ियां सबे गोपियां पहर कन गोपाल, गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार। इन्हां गोपियां ने ते इन्हां ग्वालियां ने गहने केड़े पाए ने? साहिब कहिंदे गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार। चौमासा साडे देश की एक प्रधान रुत, जद घड़ियां ते पैर पानी दा गहना पहन लैंदियां। फिर विसाख जेठ हाड़ दे पवन प्रधान, जोर दी हवा, हनेरियां, तूफान, ये घड़ियां और ये पैर हवा दे गहने जो है बकायदा पहन लैंदियां ने। फिर ऐसी रुत कि अगन ही वर्ष रही है चारों पासे, अग ही अग, लू ही लू चल रही है, तो उस वक्त घड़ियां
ਉਸ ਵਕਤ ਪੈਰ ਇਹ ਅਗਨ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਕਿਸੇ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ, ਕਿਸੇ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਦਾ ਤੂਫਾਨ, ਤੂਫਾਨੀ ਵੇਗ, ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਗਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਵੇ ਸੰਤਰ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ, ਇਸ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਧਿਕਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਧਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਔਰ ਸੂਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੀਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ, ਇਹ ਜੋ ਸੂਰਜ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ, ਥਿੱਤ, ਵਾਰ, ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਤੇ ਟੱਪਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਸੂਰਜ ਕਰਕੇ, ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ, ਜੈਸੇ ਸਾਰੀ ਲੀਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੀਲਾ ਸੂਰਜ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਾਸੂਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਾਸੂਰਜ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ। ਸਾਰੀ ਇਸ ਲੀਲਾ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਤੋ ਸੂਰਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਧਿਕਾ ਹੈ। ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਰਤਨ ਵਲੇਵਾ ਮਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਹ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵ ਇਸ ਨਾਚ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਰਤਨ ਵਲੇਵਾ ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਜੰਜਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਾਸ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀਵ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖੇੜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸੂਖਮ ਬਿਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਾਰੀਕ ਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਮੁਸੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੂਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਜਮਕਾਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਅਗੰਮੀ ਰਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਰਾਸ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ, ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ, ਉੜ ਉੜ ਰਾਵਾ ਝਾਟੇ ਪਾਏ, ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਘਰ ਜਾਏ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ, ਆਪ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ, ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚਨਾਮ, ਜਾਂ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ, ਸੇਵਕ ਸੇਵੇ ਕਰਮ ਚੜਾਓ, ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜੇ ਨਾਮਨ ਚਾਓ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ, ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ, ਫਲ ਵਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਦ, ਲਾਟੂ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਅਨਗਾ, ਪੰਖੀ ਭੌਂਦਿਆਂ ਲੈਣ ਨਸਾ, ਸੂਏ ਚਾੜ ਭਵਾਈਏ ਗੰਧ, ਨਾਨਕ ਭੌਂਦਿਆਂ ਗਣਤਨ ਅੰਤ, ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਭਵਾਈਏ ਸੋਏ, ਪਈਏ ਕਿਰਤ ਨਚੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚਲੇ ਸਿਰੋਏ, ਉੜ ਨਾ ਜਾਈ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ, ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਓ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਭਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਅਗੰਮੀ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਰਸਾਈ ਹੋਈ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਅ, ਉਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਨ ਦਾ ਪਰਚਾਵਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਹਿਮ ਤੋਮਾਤ, ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਿਆ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਾਧਨਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਾਧਨਾ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੋ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਅ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਉ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਭਾਉ,
महाराज कहने जिन्हां दे अंदर परमात्मा दा भय है उन्हां दे अंदर फिर भाव है, श्रद्धा है, प्रेम है। बाकी ये जो जो है रासलीला चल रही है ये किस ढंग नाल चल रही है, सतगुरु देव जी महाराज उसका तमाम चित्रण करते ने। वायन चेले नचन गुर, चेले ते साज बजाते ने, कोई रबाब बजा रहा है, सरंगी बजा रहा है, मृदंग बजा रहा है, तबला बजा रहा है, इस तरह के जो नाल चेले ने वो ते साज पे बजाते ने, गुरु नचदा पे है। रासदारिया रास मंडली का जो मुखी है वह नचदा पे है। हुण गुरु नच रहा है ते चेले साज पे बजाते ने, ऐसा रास लीला विच हुंदा है। वायन चेले नचन गुर, पैर हलायन फेरन सिर, बड़े सोहने ढंग नाल पैर हिलांदे ने, सिर हिलांदे ने, आखिर निरस दे विच हत्थां दा हिलाना, पैरां दा हिलाना, सिर दा हिलाना, कमर इत्यादिक दा हिलाना, शरीर दी जिहड़ी हरकत है इहनूं तरतीब दे दित्ती जाए तो फिर ये नृत्य बन जाता है। तो सतगुरु देव जी महाराज कहिंदे ने उह ढंग नाल पैर हिलांदे ने, सिर हिलांदे ने, जोर दा नचदे ने, ते जद जोर दे नाल पौठड़ी पाउंदे ने तां उड उड रावा झाटे पाए, जैसे नचदे ने ते उहनां दे चोले दी हवा दे नाल रावा रेत उड़दी है, मिट्टी उड़दी है। पुरानियां रासधारियां दा जिक्र सतगुरु देव जी महाराज अपने ढंग नाल जो है कर रहे ने। वेखे लोग हसे कर जाए, इस रास लीला नू वेख के लोकी घर जाके खिड़खिड़ा के हसते ने, खुश होंदे ने, भई सोहना गीत सुन के आया, सोहना नाच वेख के आया, बहुत अच्छा नाच होया। तो नाच बंदगी नहीं, जगत दे गीत बंदगी नहीं, रास लीला बंदगी नहीं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं मन का चाव है, मन का परचाव है। तो जो रास मंडलियां ने उन्होंने बारे साहिब कहते रोटियां कारण पूरे ताल, इन्हों का ताल पूरना, इन्हों का नृत्य दिखाना प्रभु नाल जोड़ना नहीं रोटियां की प्राप्ति है। इन्हों का सारा ध्यान रोटी से, रास तालियां की यह मनोबिरति अक्सर बहुत नीवी देखी गई है। और रोटी की मंग जिस ढंग नाल करनगे और फिर रोटी रेस जो कुछ मंग करनगे उस तो स्पष्ट होंदा है कि सारी रास रोटी दे आले दुआले हुंदी रही है। इष्ट ते रोटी सी, परमात्मा ही रोटी सी, और उस रोटी दे आले दुआले ये नृत्य हुंदा रहा, ये साग वजदे रहे और ये गुरु नचदा रहा। साहिब कहिंदे रोटियां कारण पूरे ताल, आप पछाड़े धरती नाल, खूब धरती दे नाल अपने आप नूं पछाड़दे ने, भाव लेट के भी नचदे ने, खड़े होके भी नचदे ने, इस तरह धरती दे अपने आप नूं जो है पछाड़दे ने। गावन गोपियां गावन गान, गीत की गाते ने, गोपियां दे गीत गाते ने, कृष्ण दे गीत गाते ने, ग्वालियां दे गीत गाते ने, इस ढंग की ये रासलीला चलती है। गावन सीता राजे राम, रामलीला भी आती है, वह भी रास पाई जाती है, सीता दे गीत गाते ने, राजे राम दे गीत गाते ने, महिमा गायन करते ने, इस ढंग नाल रास राम दी ते कृष्ण दी पेश करते ने। महाराज कहने निर्भव निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहां, महाराज कहने वो जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है वो ते भय तो रहत है, आकार तो रहत है, उसका की आकार पेश करोगे। उहदा नाम सच्चा है ते जिहदा कीता होया सारा जहान है, सारे जहान नूं जो नचा रहा है उहनूं नचाया नहीं जा सकता। इहदे सतगुरु देव जी ये कह रहे हैं कि वह सूरज चंद तारियां नूं नचा रहा है, वह जीवां नूं नचा रहा है, वह सारे जगत नूं नचा रहा है, धरती नच रही है, सागर नच रहा है, दरिया नच रहे हैं, पवन नच रही है, और सूरज चंद तारे नच रहे हैं। तो हुण कोई ये आखे कि असी परमात्मा की रास पा के परमात्मा नूं नचाणा है, तो जिस परमात्मा नूं असी नचा सकते हैं वो तो फिर साडे हत्थां दी खेड हो गया। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने नचण कुदण मन का चाओ, नानक जिन मन भाओ ते ना मन भाओ। तो महाराज कहिंदे ने गावन सीता राजे राम, निर्भव निरंकार सच नाम, जाका किया सगल जहान, सेवक सेवे करम चढ़ाओ। जिन्हां दे उत्ते बख्शिश होई है ऐसे सेवक सेवा कर देने, की सेवा कर देने, भिन्नी रैण जिना मन चाओ, अमृत वेला है, भिन्नी रात है, मन विच चाओ पैदा हो गए उठिए, सिर्फ शरीरक तलते ही ना उठिए सुरत नूं भी जगाइए।
सिर्फ शरीर करके ही प्रभु नाल ना जुड़ी है, सुरत नाल भी जो है जुड़ी है। महाराज कहिंदे जिन्हां दे इस ढंग की बख्शिश है वह सेवक इस ढंग की सेवा करते ने कि अमृत वेले जिन्नी जद रात है उठते ने मन दे बड़ा भारी चाव है सिखी सिखिया गुरु विचार। गुरु की विचार गुरु की सिखिया सिख के बकायदा हिरदे दे जो है धारण करते ने, अमृत वेले उठ के प्रभु की बंदगी करते ने। ऐसे जड़े सिख ने, ऐसे जड़े भगत ने, नदरी करम लंघाए पार, इन्हां दे उत्ते प्रभु की नजर हो जाती है, मेहर हो जाती है, ते परमात्मा इन्हां नूं भव सागर तो पार लंघा देंदा है, संसार सागर तो पार कर देंदा है। ते बाकी आखो नचण नाल गल बनेगी तो महाराज कहिंदे जगत विच बहुत कुछ नच रहा है। कौन कौन नच रहे ने? कोलू चरखा चक्की चक, ते बाकी आखो नचण नाल गल बनेगी तो महाराज कहिंदे जगत विच बहुत कुछ नच रहा है। कौन कौन नच रहे ने? कोलू चरखा चक्की चक, चक्की नच रही है, चरखा नच रहा है, कोलू नच रहा है। थल वरोले बहुत आनंद, मरु थलां विच वाह वरोले जेड़े ने वह नचदे पे ने। अक्सर देखने दे चाहुंदा है वाह वरोला मरुथल दे, रेत नचन लग पैंदी उस वाह वरोले दे, और रेत नचदी नचदी उपर उठ जांदी। महाराज कहिंदे मरुथलां विच इह वाह वरोले पे नचदे ने। लाटू मधाणियां अनदा, मधाणियां नच रही ने, लाटू नच रहा है, बच्चे नचांदे पे ने, मधाणियां नच रही ने मटकी दे। अनगा अन्न नूं जिहड़ा गाया जांदा है, अन्न विच जिहड़ा दाणा कढ़िया जांदा है उहदे ते पशु नचदे पए ने, बार बार बुहाटली पै लैंदे ने बैल। महाराज कहिंदे मैं इंज देखदा पिया कि नाच चारों पासे अपने ढंग नाल जो है जारी है। पंखी भौंदियां लैन ना सा, सा भी नहीं लैंदे ये पंखी, इलां नचदियां पईआं ने आकाश दे। तोते नच रहे ने, चिड़िया नच रही ने, बार बार एक घेरा दायरा बना के उहदे च नृत्य चल रहा है। कूंजां दा, कौवियां दा, और अनेकां पंछियां दीआं डारियां दा साहिब कहिंदे मैं देखदा पिया। इस ढंग नाल पक्षी जगत भी अपने ढंग नाल नचदा पिया है। सूए चाड़ भवाइए जंग, बुलबुल इत्यादक नूं या तोते नूं पेटी दे धागा बन के सूती ते रख के बुहाया जांदा है। शिकारी लोग ऐसा करदे ने। महाराज कहिंदे तरह तरह के जीवां नूं पेटी बन के धागा बन के ते सूती ते रख के नचाया जांदा है, बुहाया जांदा है। महाराज कहिंदे इस ढंग नाल मैं देखदा पिया नानक भौंदियां गणत न अंत, इतना नाच हो रहा है कि अंत भी नहीं, गिनती भी नहीं हो सकती। कौन कौन नच रहा है और कितना नृत्य हो रहा है, ये सारे का सारा बखान भी नहीं किया जा सकता। बंधन है बंध बवाए सोए, साहेब गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं कर्मां दे बंधन दे च बद्धे हुए जीव परिपूर्ण परमात्मा सारिया नूं नचा रहा है। शरीर विच देखिए खून नच रहा है, बार बार नसां विच घूम रहा है, श्वास नच रहे ने बार बार चल रहे ने, दिल धड़क रहा है, दिल का धड़कना दिल का नाच है, बार बार धड़क रहा है, बार बार धड़क रहा है। इति चारों पासे नाच ही नाच हो रहा है। पर महाराज कहिंदे कर्मां दे बंधनां विच पै के ये जीव नच रहे ने। पहिए किरत नचे सब कोए, किरत दे बंधे कर्म बंधन दे बद्धे हुए, सारा जीव जगत तरह तरह दे नाच करदा पिया है। महाराज कहिंदे नच नच हसे चले से रोए, जो नचदे नचदे हसदे ने या नाच वेखदे वेखदे हसदे ने आखिर रोंदे हो जांदे ने। भाव जिन्हां दी जिंदगी दा मनोरंजन ये नाच गाना बन गया, संसार तो रुखसत होण लग्या रोंदे हो जांदे ने। उहनां नूं पता चलदा है ये बंदगी नहीं, ये परमात्मा दा ज्ञान नहीं, ये परम शांति नहीं। साहिब कहिंदे उड ना जाही सिद्ध ना होए, इन्हां दी सुरत कोई उच्ची नहीं आउंदी और ये कोई सिद्ध नहीं बन जाते। इस तरह के नाच वेखण वाले ते रास मंडलिया के आले दुआले घूमण वाले इन्हों की कोई सुरत उच्ची नहीं हो जाती, ना ही ये कोई सिद्ध बन जाते ने। नचण कुदण मन का चाव, ये एक मन का चाव है, मन का प्रचावा है, मनोरंजन है। नानक जिन मन भाव ते ना मन भाव, जिन्हों के मन में प्रभु का भय है
ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਈਏ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਇਹਨਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਲਈਏ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੋਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਖ ਗਵਾਈਏ। ਇਹ ਜੀਵ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਉਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਉਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਖੀਏ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਐਸਾ ਅਗਰ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਗਵਾਈਏ, ਆਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਆਖੇ ਸਭ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਆਖਦੇ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਗਵਾ ਬੈਠੇਗਾ। ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨੋ ਨੀਤ ਸਦਾਈਏ। ਐ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪੈਣ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੇੜੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ, ਜੇ ਐਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਕਰ, ਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਨਾ ਸਦਾਵੀਂ, ਨੀਚ ਸਦਾਵੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਸਦਾਵੀਂ ਤੇ ਕਰੀ ਪੁੰਨ। ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁਨੀਤ ਸਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਪਾਪੀ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਤੋ ਪੁੰਨ ਲੇਕਿਨ ਸਦਵਾਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੀ। ਪੁੰਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਦਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਤੂੰ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪੁੰਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਔਰ ਪੁਨੀਤ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਔਰ ਦਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ, ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਔਰ ਸਦਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ, ਲੁੱਟਦੇ ਜਾਓ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ, ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਪੁੰਨ ਲੇਕਿਨ ਸਦਾਵੀ ਨੀਚ, ਕਰੀ ਤੂੰ ਨੇਕ ਕਰਮ ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਰੀ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਗਤ ਤੈਨੂੰ ਨੇਕ ਨਾ ਆਖੇ। ਇੱਕ ਨੇਕ ਆਤਮਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜਿਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀਆਂ ਫੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਚੋਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਪਰ ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਬੁਰਾ, ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ, ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਪੁੰਨ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਸਦਵਾਵੀਂ, ਪਾਪੀ ਸਦਵਾਵੀਂ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੁੰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੁੰਨ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ, ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ।

बचपन निर्मल हो जाता है। जैसे कोई जवानी नु परमात्मा दी दात समझदा है, जवानी बेदाग हो जाती है। कि जैसे कोई बुढ़ेपे नु परमात्मा दी बख्शिश समझदे, वैसे ही बुढ़ेपा सुरखरू हो जाता है, वैसे ही बुढ़ेपा आनंद नाल भर जाता है। पर जीवन की जांच किसे किसे नु आउंदी है। अक्सर ते बंदा यही करता है कि बुढ़ेपे नु रुखसत करा ते जवानी नु लियावां। जद कौन दसे तिन्ने उस दीआं दातां ने, तू किस तरह लिया सकेगा, जवानी उसकी दात है, तो तू किस तरह बुढ़ेपे नु घरों कढ सकेगा, उस दीक दे। जे जरवाणा पर हरे जर वेश करें दी आई है, जर बुढ़ेपा ते तरह तरह दे वेश धारण करके आवेगा। तू मूह दे चों बुढ़ेपे नु कढ़न की कोशिश करेगा, पैरां दे राहीं प्रगट होगा। तू हत्थां दे चों बुढ़ेपे नु कढ़न की कोशिश करेगा, वो अखां दे च प्रगट होगा। तू मत्थे चेहरे तो बुढ़ेपे नु एक पासे करेगा, वो तेरे बोलां दे च प्रगट होगा। तेरे बोल ही दस देणगे तू बुढ़ा हो गया। बोलां दे चों भी बुढ़ेपा प्रगट हुंदा है, उठण बैठण दे च भी बुढ़ेपा प्रगट हुंदा है। जे जरवाणा पर हरे जर वेश करें दी आईए, को रहे न भरिए पाइए। पाइए एक दाने मिणन दा पैमाना है, टोपी पड़ोपा पाई। पुराने ते पैमाने ने जब दाणिया नू तोलिया घट जांदा सी ते मिणिया ज्यादा जांदा सी। जिस पैमानिया च मिणिया जांदा सी सब तो वड्डा टोपा हुंदा सी, उस तो छोटी पड़ोपी हुंदी सी ते उस तो छोटी पाई हुंदी सी। साहिब कहिंदे ने शरीर दी पाई जिस दिन स्वासां नाल भर गई, पाओ स्वास पूरे हो गए, तां फिर इस नू रखना बड़ा औखा हो जाएगा। जैसे पाई भर जांदियां ने दाणिया नाल ते दाणे उंडेल के दूजे पासे सुट दिते जांदे ने, इही मिणन दा ढंग सी। इधर दाणे मिणे पाई विच पाए, पाई भर गई, पड़ोपी भर गई, टोपा भर गया ते परले पासे सुट दिते। इधर शरीर दे स्वास पूरे होए, इधर शरीर नू परे पासे सुट दिता, एक पासे गिरा दिता। महाराज कहिंदे ने को रहे ना भरिए पाइए, जैसे जीवन दी ये पाई भर गई फिर इनू रखना बहुत औखा हो जाएगा, फिर जीवन नू रखना बहुत औखा हो जाएगा, फिर श्वासा नू रखना बहुत औखा हो जाएगा। पाई ने ते परे सुट देना है, इस पड़ोपी ने परे सुट देना है। आम ठेठ देहाती ते लोक भाषा दा साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इत्थे प्रयोग कीता है, क्योंकि आप समझते सन आलम फाजल भी मिलणगे, देहाती भी मिलणगे, ज्ञानी भी मिलणगे, मूड भी मिलणगे। हर एक नू अपने अपने ढंग नाल ते अपने अपने बोल चाल नाल गुरु नानक देव जी महाराज समझांदे जा रहे ने। इस पावन पवित्र श्लोक दे आप फरमान पै करदे ने, जे शरीर दी पाई भर गई, स्वास पूरे हो गए, तो इनू फिर सुरक्षित रखना, बचा के रखना औखा हो जाएगा। इस पौड़ी दे साहिब कहिंदे निरंकार आकार तो रहत है, ते प्रभु दी बख्शिश द्वारा गुरु दी प्राप्ति आउंदी है, ते गुरु दी बख्शिश द्वारा ज्ञान प्राप्त आउंदा है, ते उस ज्ञान द्वारा निरंकार दी प्राप्ति होंदी है। मूल गल्लां सतगुरु देव जी महाराज ने पौड़ी ते श्लोक विच यही दसी।

पातशाही दसवीं सब लोग ग्रंथ लंक लूट ले आऊं पलंग पे खाना चलाऊं नर्द कद मैं मिलाऊं जो माते अब मान के नर्द कद मैं मिलाऊं जो माते अब मान के रोम नौबत

काजल हार संबोल रस काजल हार संबोल रस काजल हार संबोल रस बिन पत्ते भावरा सिहार बिन पत्ते भावरा सिहार ये तुम पत्ते ना ये तुम पत्ते

भगत नहीं साथी। कहो नानक हम लूण हरामी, बख्श ले हो प्रभ अंतर जामी। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गह ले हो और निभावे।

प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार हे समरथ अगम पूरन मोहे मया धार अंधे कूप

काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक धोखा तन छाद पूरे प्रभु बिना आलम।

प्रब बिना आन न राखन हारा नाम सिमराबो शरण सूरे हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना दास अपने

आपके रतन जवाहर मानत आपके महिमा सारी आपके रतन जवाहर मानत आपके महिमा सारी आपके दर्शन आप जलावे नेत्र है जब सारी।

सतगुरु सुचता पूरै सतगुरु ए हरन सत हरते हरन सत हरते हरन सत हरते सब अंधेरे

मन मेरे हर के चरण की जय, मन मेरे हर के चरण मेरे हर के चरण की जय, मेरे हर के चरण मन मोहे हो।

सूत सौत नाम श्री वाहिगुरु गुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी वाहिगुरु जी का साक्षा वाहिगुरु जी का सतनाम वाहिगुरु साहिब जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दर्शन प्यासी दिन सरात चित भवन दिन नीत खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संग मीत दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा

पौते जन्म में आता सब कुछ सब सुनाया सब कुछ देवर जाता को नहीं सब सुने लोग सुनाया सब मिला सच पाया जिन बिचो आप सुनाया।

प्रभु का सिमरन दुख जम नसै, प्रभु का सिमरन काल पर हरै, प्रभु का सिमरन दुश्मन करै, प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभु का सिमरन अंत न जागै, प्रभु का

कै सिमरन सबके सूजै। प्रभ कै सिमरन नाही जमत्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभ कै सिमरन मन की मल जाय, अमृत नाम अमृत माहे समाय। प्रभ जी बसाय साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरै से तनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते, प्रभ को सिमरै से जन परवान, प्रभ को सिमरै से पुर प्रदान, प्रभ को सिमरै से बेमोताजे, प्रभ को सिमरै से सर्व के राजे, प्रभ को सिमरै से सुखवासी, प्रभ को सिमरै सदा बनासी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला। प्रभ को सिमरै से परपकार, प्रभ को सिमरै ते सद बलहार, प्रभ को सिमरै से मुख सुहावै, प्रभ को सिमरै ते सुख बिहावै, प्रभ को सिमरै ते आत्म जीता, प्रभ को सिमरै ते निर्मल रीता, प्रभ को सिमरै ते अंध कने, प्रभ को सिमरै बसै हर नेरे, संत कृपा ते अंध न जाग, नानक सिमरन पूरे पाग। प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभ कै सिमरन कब हो न चूरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहस मानी, प्रभ कै सिमरन निश्चल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बेगासन, प्रभ कै सिमरन अनंत चुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार। सिमरै से जन जिनको प्रमया, नानक तिन जन शरणी पया, हर सिमरन कर पग प्रताय, हर सिमरन लग भेद उपाय, हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौकुंड जाते, हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की ओस

अवर करतूत सगली जमदाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सहज सुभाए चार पदार्थ जे को म

फूक कनेर कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुमते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दा सदा कुर्बानी श्लोक तीन हाँ।

प्रसाद सुख सहजे बसनाम। जय प्रसाद हस्त कर चलै, जय प्रसाद संपूर्ण फलै, जय प्रसाद परम गति पावै, जय प्रसाद सुख सहज समावै। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो। जय प्रसाद तू प्रगट संसार, किस प्रभ को मून

रुपैन। साध के संग न कतहु तार, साध संग अस्तित मन पाव। साध के संग माया तिपिन, साध संग नानक तब सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु के संग महापुनीत। साध संग किसो नहीं बैर, साध के संग ना बीगा पैर। साध का संग नहीं को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध का संग नहीं होता तो, साध का संग कदे सब आप। आपे जाने साध बिडाय, नानक साध प्रभु बन आय। साध के संग न कब होता वै, साध के संग सदा सुख पावे। साध संग बस्त गुचर रहे, साधु का संग अजर सहे। साध के संग बसा थान ऊंचा, साधु का संग महल पहुंचे। साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान। साध के संग सब कुल उदार, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार। साधु कै संग सो तन पावे, जिस तन ते सब कुवर सावे। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग सो बासुर देव। साधु कै संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध के संग सर्व थान कम, नानक साध के संग सफल जन्म। साध के संग नहीं कछका, दर्शन पेट तो होत निहाल। साध के संग कलूख धराय, साध के संग नरक पर हराय। साध के संग

साध का संग ना व्यर्थ जाय, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उदरा साध सुन रसै। साध के संग सुनो हर नाम, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग

साधु कै संग कट कट दीठा साध संग पया गया कारी साध संग कट पई हमारी साध के संग मिटाए सब रोग नानक साध पे तै संजोग।

भरपूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नहीं अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंचे ऊंची साध की शोभा मूचे मूची

ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नान ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी

साध संग तारै जन को कर कृपा अंतर तारै पस प्रेत मुग्ध पाथर को तारै।

नानको पुरख कहिया जीवन मुक्त पाद्रम के सगले ठाव जित जित कर राखे पैसा तन नाव आपे करन करावन जो प्रपावे सोई पुन।

ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबू पीत हस्पतल हो जिया अनक जोन परमे परमिया नाना रूप जो संगी दिखा।

बिना संतोष नहीं को राजा स्वप्न मनोरथ दिखे सबका जय नाम रंग सर्व सुख होए वडपागी किसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करने हार इसका हाथा विचार जैसी दृष्टि करे तैसा हो अपे आप प्रभु सो जो किन्नों सो अपने रंग सब दे दूर सबू कै संग बुझा देख करे विवेक अप एक अप अनेक मर न बिरस आवे न जाय नान सदी रह सुनाय आप उपदेश

संत का निंदक राज देहीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन, संत के निंदक कौ सर्व रोग, संत के निंदक कौ सदा बिजोग, संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसी का नहीं मित, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्याग, संत का दुखी महंकारी, संत का दुखी सदा भिखारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख ना सुखते तरे, संत के दुखी को नहीं था नान संत पावे ता लय मिलाए, संत का दुखी अद बीच टूटे, संत का दुखी टूटे ताज ना पहुंचे, संत के दुखी को उद्यान फरमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी

साहिब संत के दुखी को अवर ना रखनहार नानक संत पावे तले ओबार संत का दुखी क्यों बिललाए जो जल बहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नीरा जाए जो पावक ईदन निद्रा पै संत का दुखी सुतै अकेला जो गुआर तिल खेत महे दोहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सब मिथ्या कहत किरत निंद का तुही पया नानक दोत पावे सोई किया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को तरके मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी न मरे ना जीवाई है संत का दुखी

मानक टेक बुद्धि सब जान देवन कोई कै भगवान जिसका दिए रहे अकाय बहुत न कृष्णा लागे आय मारे राखे इको आप मानक कहे किस नाही हाथ किसका हुक्म बूझ सुख होए किसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर कर सोए नानक बिघ्न न लागे कोय उस्तत मन में कनिकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रस

सर्व कला पर पूर प्रभ दृथा जन्म हार जाके सिमरन उदरी है नानक तिस बलहार सभी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व दिया।

जो अंधकार दीप प्रकाश गुरु दर्शन दे कमन हुए बेगास जो महाउतिया मार्ग पावे जो साधु संग मिल जो टूटावे जिन संतन की बाजो तोर नानक की हर लुचा पूर मन मूर्ख काहे बदलाई है पूर्व

जस होगा सूत पर सनस्तरी अबनासी प्रमन में राख मान की तू पीते आग चित्र पर नहीं किस कोई सब निरंतर एको सोय आपे बिना आपे दाना घर गंभीर गही सुजाना पार बन परमेश्वर गोविंद कृपा ने दान दयाल बख्शंद साध चली क

आनंद रूप मंगल सर्जा कै सर्व थोक सुनिया करता कै राज में राज जोग में जोगी तप में तपीसर ग्रस्त में भोगी त्याय त्याय भगतै सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया झांकी लीला कीमत नाहि सगल देव हारे अवगाहि पिता का जन्म कै जाने पूते सगल परोई।

नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सुनत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे अगात पाताल, नाम के तारे सगले आकार, नाम के तारे प्रिय सब पवन, नाम के संग उदरै सुन सरवन, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रदान, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सब महे समान, सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बजाए तिसै सब पली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जा कर दे प्रवेश, सत नृत दूजे दे कोए, नाम जपत ताकि गप होए, आप सत किया सब सत, आपे

एक ठाकर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकर का सेवक सदा पुजारी, ठाकर के सेवक का मन प्रतीत, ठाकर के सेवक के निर्मल रीत, ठाकर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम का रंग, सेवक को प्रभु पालनहारा, सेवक की राखी निकारा, सो सेवक जिस दया प्रभु तारा, नान को सेवक सा सा समार, अपने जन का परदाता कह, अपने सेवक के सर पर रख, अपने दास को दे बजाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत रख, ताकि कदमित कोई न लख, प्रभु के सेवक को न पहुंचे, प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नान को सेवक दैद प्रताया, निकी चीरी में कलरा खैन, पश्चिम करा लस्तर कोट पा खैन, जिसका सार

नाम सुख हर नाम का संग नाम रस जो जम तृप्ताने मन तन नामे नाम समाने उठ बैठ सोवत नाम कौ नानक जन कै सद काम बोलो जस जे बाजन रात प्रभु अपने जन की दात करै भगत आत्म कै चाहे प्रभ अपने स्यों रह समाए जो हुआ हो वसो जाने प्रभ अपने का हुक्म पहचान किसकी महिमा कौन बखानो किसका गुण का एक न जानो आठ पहर प्रभ

जन जन अपना प्रभु पछाता सोजन सर्व तो का दाता जिसकी शरण सर्व सुख पावे जिसके दर्श सब पाप मिटावे अवर सियान तो सगली साड किस जन की तू सेवा।

सिमरत सासत वेद विचार हर की भगत करो मन लाए मन बंसत नानक फल पाए संग न चालस तेरा तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत नीत कुटुंब अर्पण।

मन्ने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माय जन्म जन्म के कल विख जाए आप जपो औरा नाम जपाओ सुनते कहते रहत गत पाओ सार भूत सत हर को नाम सह सुबह नान गुन गाओ गुन गावत तेरी पुत्र समैल बिरस जाए

प्रभु व्याप अनक विचार एक ए पए एक राष्ट्र गए मन तन अंतर एक कबराता गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत

जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संसमार तह किसे पूख कवन तृप्तावै कर्ण करावन करने हार नानक करते का नहीं शुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाए तब कवन माए बाप मित्र सुध पाए जय सब कला या पे प्रवीण तह वेद कतेव कहां को चीन।

जय पसर पसार संस्कृता धूपा काया पे तनी उनकी शोभा उन्हों बनी आप कौत कर अंतोज आप रस भोगन निर्जोग जिस पावे तिस अपना लावे जिस पावे तिस खेल खिलावे देश मार अथा अगनत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै श्लोक जी जंत के ठाकरा आपे वर्तन हार नानके को पसरिया।

ससियर सूरन खतर में एक बानी प्रभ की सबको बोले आप अडोल ना कबू डोले सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाइए गुण अमोल सर्व जोत में।

मन अंतर की उतरै चिंद आस अंत त्यागो तरंग संत जना के तूर मन मंग आप छोड़ बिनती करो साध संग अग्न सागर करो हर तन के परलिहो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सह

सावधान एकागर चीत सुखमनी सहजनी गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निदान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण हो प्रदान पुरख प्रगट सब लोय सब ते ऊंचे

0: अमृत दे दाते आप अमृत की मंग कर रहे हैं। अज मेरे किसी वीर किसी भैन नूं अमृत छकण वास्ते बेनती कर दईए ना, जिहड़े बहुते पढ़े लिखे ने अगों जवाब पता किस तरह का देंदे ने, जे सिखी तां अंदर दी होनी चाहीदी है। अमृत छकी तो बहुते सिख नहीं बन जाईदा, देखे ने कृपाना वाले भी सिख, उन्हां तों कई गुणा वधेरे साडा जीवन चंगा है। जरा सोचिए कि अजे कलगीधर पातशाह विच सिखी दी कमी सी जां उन्हां मरजीवड़ियां दे विच जिन्हां ने अपने सिर भेट करके अमृत दी दात लई। जे अमृत दे दाते कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं अमृत दी लोड़ पै सकदी है तां सानूं क्यों नहीं। असीं इह वी गल ध्यान दे विच रख लईए कि पातशाह ने दोवें तरह की सिखी नूं लाजमी करार दे दिता है, अंदर की सिखी भी ते बाहर की सिखी भी। गुरु खालसा जी बाहर की सिखी रखनी तो है ही बड़ी सौखी, ते जदों असीं अंदर की सिखी की गल करते हैं इस विच बहुत कुछ अच कुछ आ जाता है। अमृत वेले का जागना, इशनान करना, वाहिगुरु गुरु मंत्र का जाप करना, पंजां बाणियां का नितनेम करना, रोज सवेरे गुरुद्वारा साहिब जाना, अरदास दे विच शामिल होना, हुक्मनामा सुन के फिर अपने दिन के कार विहार शुरू करने, सरबत दे भले दी लोचा अपने मन दे विच रखनी, धर्म दी किरत करनी, दसां नौहां दी किरत कमाई करनी, वंड के छकना ते अपने दसां नौहां दी किरत कमाई दे विचों जसवंद कढ़ के परोपकार दे कारजां दे विच लाउणा। काम क्रोध लोभ अहंकार के विषय विकारां दे विच ना आके इन्हां नूं अपने काबू दे विच करना, बहिंदिआं उठदिआं हर नाम ध्यारे दी पंक्ति ते चलदिआं होइआं स्वार स्वार सिमरन दे विच जुटे रहना, शाम नूं रहिरास साहिब दा पाठ करना, शाम तों पहिलां कीर्तन सोहले दा पाठ करना, जे ए असीं सब कुछ कर रहे हां तां धन ने मुबारक ने ऐसे मुखारबिंद जिन्हों तो यह सुनने को मिलता है कि सिखी तो अंदर की होनी चाहिए है। पर जे असी केवल कह ही रहे हैं कर कुछ भी नहीं रहे तो साढ़े वर्गा भेखी से पखंडी होर कोई हो नहीं सकता। धन ने वो बड़ी कीमत है जिन्हों ने केस रखे फिरे, पर पातशाह केवल केसा के नाल संतुष्ट नहीं। पातशाह ने साफ साफ कह दिता है धरे केस पहल दिन भेखी मुड़ा सिख, मेरा दर्शन नाहे तिस पापी त्यागे सिख। भाव कि तू केस तो रख ले पर जे अजे तक खंडे बाटे की पहल नहीं छकी तू तो सिख हो ही नहीं सकता। तू भेखी है पखंडी है जो सिख होता नाटक कर रहे हैं, ते ऐसे सिख नूं असीं कदे भी दर्शन देंदे नहीं। तो गुरु खालसा जी आओ असीं पातशाह दीआं बख्शिशां लैण वास्ते खंडे बाटे की पहल छकीए। कलगीधर पातशाह जी अमृत छकी गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बनने वास्ते किस तरह अमृत की कुट लैण दे वास्ते पंजां प्यारियां दे पास बेनतियां करदे ने, तां सानूं तां पातशाह ने बड़ा माण बख्श दिता है, सानूं सिंह ते कौर दा रुतबा बख्श दिता है। तो गुरु खालसा जी आओ साढ़े नावां दे नाल सिंह ते कौर लगे ही ना, असीं असल दे विच सिंह ते कौर बन जाइए। कलगीधर पातशाह दे वीर पुत्र ते वीर पुत्रियां अखवाउण दे हकदार हो जाइए। तो इह जो आपां अज दा इतिहास सरवण कीता है किन्नियां ने इस हिरदे दे विच वसा लिया है ये पता लगना है। ऐतवार नूं होण वाले अमृत संचार दे विच पातशाह ने बार बार कहा सतगुर बाजो गुर ने कोई नी गुरे का है ना बुरा, नी गुरे का तो ना लेना भी माड़ा है। और अजे तक जिन्होंने खंडे बाटे की पहल नहीं चकी आओ छेती तो छेती पहल चक के कलगीधर पातशाह जी दे चार बार चार सिंह सिंघनियां सज गई।
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singhsabha2@gmail.com singhsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

बिरहोगा एक ऐसा सांप है, ना पी लिया जाने वाला सांप। किसे मंत्र नाल पी लिया नहीं जाता, मंत्र ना मारने कोई। जिन्हों बिरहोगा बिछोड़े का एहसास जो है ये दस जाए।

विरह भुजंग मन बसे मन न माने कोए आराम बिजोगी राम तो बिछड़िया होया बिजोग ना मिलाप जाए ते बिजोग दार छुटा ना मिलाप बिछड़िया होया योग मिलाप नहीं कर दे ते बिजोगी दा मतलब है बिछड़िया होया जिंदा मिलाप नहीं गुरु ने बाणी में क्या कहा

मेरा मन तो बहुत बड़ा गया। क्यों? इसलिए क्योंकि नैन रस भिन्ने नैना ने प्रभु दे मिलाप दा रस मान लिया। एक बार मान लिया जाए उसे एहसास ज्यादा पता लग गया प्रभु दे मिलाप दा सुख की है ते विछोड़े दा दुख की है। इसलिए हे गुरमुख जनो आओ मिल बैठ के गुरु को एक बेनती करिए। सुने गुरु मिला देता है। आओ मिल बैठ के गुरु को बेनती करिए।

के गुण परमात्मा है, गुण नाम है। जेडे काम विच गुण ना होवे, नाम ना होवे, प्रभु की चेतनता प्रभु की ना हुक्म ना हो छड़ दे, वो अग्न हो जाएगा। बस गलत गुण तो अग्न में चाहिए अंतर, जिंदे विच गुण नहीं वो अग्न है, जिंदे विच गुण है परमात्मा, जिंदे विच गुण है वो नाम है। गुरु आखते हैं जिंदे विच गुण नहीं वो अग्न वाले काम छड़ दे।

के हर कम में हरि दे कम ला दिता। हरि दे कम सन गुण, हरि दे कम सन निर्मल, बस इो जिछड़े हो हिंदा मिलाप कर दिया कर्म करके ते मिलाप क्यों होया। हम एक सवाल पैदा हो गया ताकि मुड़ मुड़ ये रोग ना पैदा हो, मुड़ ना विछड़ा, मिलन तो बाद भी विछोड़े का डर तो हों ना। गुरु अर्जुन पातशाह जी का शब्द जरा उनकी चौथा पद पढ़ो भाग हुआ, गुरसंत मिलाया प्रभ अविनाशी घर में पाया। पर अजे एक गल होर समझना चाहना, वो की कि सेव करी पल चसा न विछड़ा। हर काम सोच सोच के गुरमुख की कसौटी से परख पर गुरु ने मैंने कड़ी कार्य लाया, परख परख के करना कि ऐसा न हो, फिर कोई काम ऐसा कर पवा कि दरमियान विच एक दीवार खड़ी हो जाए, विछोड़े की दीवार खड़ी हो जाए। ये भी समझा दो विछोड़ा होया क्यों ते किवें हुंदा, किवें हुंदा। गुरु ने आख्या हों हों भीत पयो होए विच वसलोक शुरू हो गया, कहन लगे विछोड़ा हुंदा है हों कर, हों हों भीत भयो होए बीचो सुनत देश निकट आयो। ये पता लगा भी रब ते बहुत नेड़े रहिंदा, बहुत नेड़े रहिंदा। साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोयाड़ा मेरा बड़ा नेड़े रहिंदा, पर फिर मैनू क्यों नहीं मिल गया, मैं क्यों विछड़ गया। सेज एक पै उथे मन रहिंदा सी शरीर विच काया विच, उथे परमात्मा रहिंदा सी। सेज एक पै पर दोनों विछड़े हुए सन, मिलाप नहीं। सेज एक पै मिलन दोहरिया मिलना उठा, हम अंदर ही दोनों चीजों ने इको टिकाने में मिलाप कोई नहीं। ये विछोड़ा क्यों है, कहने लगे है तो नेड़े सी पर दरमियान विच दीवार खड़ी हो गई, उसकी हाहों दी हाँ हाँ भीत भयो है बीचो सुनत देश निकट आयो। पता लगा रब नेड़े है पर मेरे ते उनके दरमियान विच एक दीवार खड़ी हो। गुरु ने कोटा में भी आखिया, कहने लगे कोई मनुख प्यासा हो तो सरोवर भी बिल्कुल नाल हो भरिया होया, सरोवर पाल समूह सर भरा पी ना सकते कोई नीर, नाल ही तक भरिया होया तलाब हो गए। पर प्यासे दे ते उस सरोवर के दरमियान विच एक पाल दीवार खड़ी हो जाए, गल तो चार इंच की दीवार भी है ना, पर वो चार इंच की दीवार प्यासे की प्यास नहीं बुझन दे। पाल है पर समूह सरवर भरा, बिल्कुल नका नक सरवर भरिया हो, कभी थोड़ भी नहीं आनी। दुनिया जिन्ना मर्जी जीवन उनके लै जाए उनके जीवन की थोड़ कभी नहीं आती, वो मेरा जीवन है। पाल समूह सरवर भरा पी ना सकते कोई नहीं, कोई उस अमृत के चश्मे विच्चों हरी अमृत विच्चों कोई पी नहीं सकता पे, प्यासे लोग बैठे ने तड़प रहे ने। गुरु ने यह गल आखी, कह लगे सिखा तिहाया क्यों लहे, तिहाया की प्यासियां की कृष्णा प्यास किवें बुझे, सिखा तिहाया क्यों लहे क्यों, क्योंकि जां सर पित्तर पाल जिनों सर दे ते मेरे दरमियान विच कपाल है दीवार, हां हां बीत भय होए बीच हां दी दीवार। गुरु कहते कि संसार के विछोड़े का कारण यह है, हूं हौमे का कोई एक रूप नहीं, हौमे का कोई एक रूप नहीं, बड़े रूप एक बार की
ਘਰੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਕੱਢ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਸਾਹਮਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮੇ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹਰੀ ਆਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਜੇ ਹੋਮੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਖਦੀ ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕੱਢ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਦਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਦਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਆ ਗਈ ਹਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ ਮਹਿੰਗਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਰੋਗਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣੇ ਰੋਗ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆਂ ਕੋਈ ਰੋਗ ਚਾਹੁੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਏ ਨੇ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਰੋਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਏ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਰੋਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਫਿਲਟਰ ਪੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪਰ ਰੋਗੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਉਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਰੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਰੋਗ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਹੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਰੂਪ ਕੋਲੋਂ ਬਚਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਸ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਆਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ

0: वो बिछोड़ा वो तड़पना दूर हो जाए। कह लगे
1: नानक कहे सुनो जना इस संयम दुख दाए,
0: क्योंकि जदों इलाज लभने दवाई लभने नाल संयम भी है। परहेज का ना ही मर्यादा है, उस परहेज का ना ही डिसिप्लिन है। किन्ने बजे दवाई खानी, किन्नी डोज खानी, वो हजम होनी चाहिए, उनके नाल की खाना है की नहीं खाना, यह सारा डिसिप्लिन है। उन्होंने संयम कहते समझता है अपनी रत, नाम है रोग नू दूर करने वाली दवाई, ते शब्द है नाल संयम। हुण मसला आ गया जी, वो संयम की है? जिन्हां कोल संयम आ जांदा है ते इलाज आ जांदा है, जिहड़े रोग नू दूर कर सकदे ने, भला उन्हां दा रूप, उन्हां दा स्वरूप, उन्हां दीआं निशानियां की ने? कहण लगे उन्हां दीआं निशानियां

देखना यह है कि दुनिया बंधन है तो तोड़े का मतलब छड़ गए नहीं। बंधन वह होंगे जिन्हों तुम छड़ ना सको, आज पर जिन्हों त्याग ना सको। कैद बंधन, तुम अपनी मर्जी नाल बाहर आ सकते हो। एक गल की घर में चार दीवारी है, कैद भी जेल भी चार दीवारी है, सिर्फ फर्क तो इना ही है। असं घर रहना चाहते हैं, जेल में नहीं रहना चाहते। उनका कारण की है, उतो तुम आपे नहीं मर्जी नाल बाहर आ सकते। घरों जिस मर्जी दरवाजा खोलो, आपे बाहर आ रहे हो। जिन्हों तुम छड़ ना सको, त्याग ना सको, वह बंदा जिनके ग्रिफ्ट में हो जाओ, जिनके ग्रिफ्ट में ऐसे फसो, जिस जाल में ऐसे फसो, तुम छड़ ना सको। उनका विछोड़ा, उनका जाना औखा करे। जे माया आवे ठीक है, ना आवे ठीक है, फिर बंधन है। ये पुत्र है ठीक है, नहीं हैगा बंधन है। ते जे तड़पना लग पाए मैनू आ क्यों नहीं आया, तो बस बंधन है। वह जरा त्याग ना सकन वाला कम है ना। अगू तेग बहादुर पातशाह जी का शब्द क्यों है, जो नर दुख मैं दुख नहीं माने, सुख सने हर पै नहीं जाते। तू त्याग नहीं सकता हो, तेरे में पकड़ ना हो, पकड़ बंधन है अपने आप। गुरु कहने लगे, दुनिया तोड़े बंधना, दुनिया में चले पर दुनिया की पकड़ में नहीं आते। दुनिया पा भी रहे ने, दुनिया मान भी रहे ने, पर दुनिया त्याग भी सकते हैं। मरण जीवन जो सब कर जाने, वो जीव भी रहे ने पर मर भी सकते हैं, जीवन त्याग भी सकते हैं। इसके का नाम गुरु तेग बहादुर पातशाह जी को भी जीवन संसारक जीवन सी ना आखिर दे जीवन में त्याग भी सकते। मरण जीवन जो सब कर जाने,

0: हरसिमरत सदा हुए आनंद सुख अंतर शांत शीतल मन अपना।
1: गृह बनवाज पिताजी आज वचन कर रहे ने वाहिगुरु दा सिमरन करके सदा लई आनंद ते सुख मिलेगा। हुण सारी दुनिया की लभदी फिरदी आनंद ते सुख नूं लभदे फिरदे आ। हुण गुरु का वचन होवे ते उहदे च इह तैनूं नहीं शक वी इह काम खोएगा या ना खोएगा, खुरे खोएगा जां कदों होएगा, इह साडे अपने मन दी कल्पना बेकार विकार है, इहदी कोई कीमत नहीं। साहिब कहिंदे हुक्म हो गया है ते जो हो गया उह प्यारो हमेशा वचन सच्चा रहना है। साहब कहिंदे सदा ही आनंद ते सुख मिलेगा वाहिगुरु दे सिमरन नाल। पर अगला वचन है जेड़ा जगत दे अंदरों खिरदे तप रहे ने, जेड़े खिरदे अंदरों सड़ रहे ने, मन जेड़ा जे भट्ठी च दाणा पुजदा इवें पुजे होए ने। हजूर कहिंदे सिमरन कर इहदे नाल अंदरों शांत भी खोएगा ते शीतल भी खोएगा। गुरु सवारियो कई वार ना असीं भाई गुरदास साहब जी के बचना की जो गल करते हैं तो साढ़े मुँह से आम ही शब्द चढ़े हुए ने। जो गुरु नानक साहब जी जगत से आए उदो इस जगत के अंदर बड़ी बल रही थी अग। ये अग कही है जिद सारे सड़ते हाँ, ये तृष्णा की अग है, होमे अंकार की अग है, गुरु के प्यारे हो ईरखा द्वैष की अग है, काम क्रोध लो मोह की अग है। ये जिहड़ी अग उदों भी बलदी से गरीब बनवाज पिता दे जदों वचन करदे आ पर सतगुरु जी आए उन्होंने देखिया बाबा देखा ध्यान तर जलती साफ पृथ्वी दिस आए अग लगी सी। साहबा ने वो अग बुझाई। याद रखना गुरु के प्यारे हो उदों भी अग लगी सी जिन्हां ने गुरु नानक साहब जी का वचन कमाया उन्हां दे अंदर शीतल ते शांत होए, अज भी वो